0: हाँ की हो गया?
1: Nothing man, just पंगा man, just happen again.
0: फिर?
1: Yeah man.
0: तेनु पता अपन ये पहली गला हाले तक सोच
1: ले. Yeah man, I know but they started it man. Just call everybody man.
0: एक बारी फिर सोच ला फिर हमें पंगा.
1: Fuck them up man. Let's do it man.
0: चल आ गया मैं फिर.
1: Yo honey.